सुप्रभात सौठास पुराना 3 दशांश मीटर्स एट के 1314 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी आ भूज केन्द्र छे। आज रविवार ज्येष्ठ दिनांक 24 शक संवत 1948 तारीख 14 जून 2026 अत्यारे सवारना 5:58 અને 29 સેકન્ડ થઈ રહી છે। પ્રસારણની પ્રાતઃ સભાનો પ્રારંભ કરીએ મંગળ સ્વરથી।

0: नरेंद्र मोदी बागेश्वर फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रिहरघर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रिहरघर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया

कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया है। सदस्य देशों ने अंगीकार घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में चार नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटिंग वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी।

सुबह 6:15 से 7:45 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्वभर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1800-3157008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद हॉर्मुज बंदर सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघे ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एक दिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7

अपनी चतुरंगनी सेना की अगणित टुकड़ियों के साथ रावण युद्ध भूमि में उतरा है। तरह तरह के रथ तथा वाहनों पर रंग बिरंगी पताकाएं फहरा रही हैं। ऐसी विशाल सेना के पदचाप से इतनी धूल उड़ी है कि सूर्य का प्रकाश लुप्त हो गया है। पवन जैसे ठहर गया है। पृथ्वी आतंकित है। दिशाओं के प्रहरी हाथी डगमगाने लगे हैं। ढोल और नगाड़ों की ध्वनि से दिशाएं प्रकंपित हो रही हैं। रावण रथ पर सवार है, जबकि सामने अपने भीमकाय वानर और रीच योद्धाओं के साथ श्रीराम पैदल। दोनों पक्षों के सेनानी एक दूसरे को ललकार रहे हैं। विभीषण के मन में शंका घिराती है कि रथ पर आरूढ़ रावण को श्रीराम किस प्रकार पराजित कर सकेंगे। श्रीराम मुस्कुराते हुए उनकी शंका का समाधान करते हैं। युद्ध में विजय सदा धर्मरथ की होती है। शौर्य और धैर्य उसके पहिए होते हैं। सत्य और शील उसकी पताकाएं, बल विवेक इंद्रिय शमन और परोपकार उस रथ के अश्व होते हैं, जो क्षमा दया और समता की रस्सी से जुटे होते हैं।

ಸಜ ಭಯ

0: नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी जी सेवन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए।

0: için barış gidiyorum. Ayıcık iz kaynaklarını 120 sezada Bharatiya Startup ke saat saat başlık nevişek CEO ve teknoloji lideri sallayın. Şeyleş Menon ki report ke saat samaçar kapçısı Şeram Şerma.
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने बताया है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। यह लूनर लैंडर को चंद्रमा के बहुत ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में श्री नारायण ने बताया कि इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने का काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। यह सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरा घर की शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहर घर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वर्तमान में वे थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत है। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने की संभावना व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलजमी मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागही ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिन में ऐसा संभव हो। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहुंच गया है। इसके अगले 3-4 दिन में उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माले, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा का अनुमान है।

पांचवा पाकिस्तान के साथ मैच से खेलेगा। मैच बर्मिंघम के एजबस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी ट्वेंटी अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए 16 में से 13 मुकाबले जीत चुका है। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार वर्षा के कारण मैच की शुरुआत में देरी हुई और इसे 25-25 ओवर का

0: केन्द्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जणाव्युं छे कि बार वर्षमां देशमां आर्थिक विकास रोजगार सामाजिक सुरक्षा कृषि महिला सशक्तिकरण सहितना क्षेत्रोमां नोंधपात्र परिवर्तन आव्युं। पोरबंदर खाते देशनो सौथी अद्यतन फर्नीचर पार्क बनशे। नायब मुख्यमंत्री हर्ष संघवीए राजकोट खाते ₹74.32 કરોડના खर्चे नियमित पुल लोकार्पण कर्युं। आज राज्यभरमां 2 લાખથી વધુ ઉમેદવારો લોકરક્ષક પ્રતિ માટેની લેખિત પરીક્ષા આપશે। हवामान विभागे आगामी 7 દિવસ दक्षिण गुजरात में हलवा मध्यम वरसाद की आगाही करी। श्री मनसुख मांडविया जणाव्युं कि छेल्ला 12 वर्ष में देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास सामाजिक सुरक्षा कृषि महिला सशक्तिकरण रोजगार और आर्थिक विकास क्षेत्रों में नोंधपात्र परिवर्तन आव्युं छे।
1: मोदी जी 12 वर्ष ना कार्यकाल दरमियान 4 કરોડ लोगों ने मकान उपलब्ध कराया, 35 કરોડ लोगों ने जनधन खाता खोलिया, देश में गरीब घर टॉयलेट उपलब्ध कराया, 80 કરોડ लोगों ने मुफ्त अनाज की योजना चलाई, देश ने अंदर किसानों माटे उत्पादन कोस्ट की 2 ગણી कीमत MSP थी खरीदी करी, जेती करी यहाँ लोगों ने जीवन धोरण पर अप थयो, साथ साथ देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर थयो।
0: पोरबंदर लोकसभा सांसद तथा केन्द्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया पोरबंदर जिला में विकास ने लगती अनेक महत्वपूर्ण जाहरात करी। पत्रकारों से बातचीत में केन्द्रीय मंत्री जणाव्युं कि पोरबंदर लोकसभा विस्तार में विविध विकासलक्षी प्रोजेक्ट ने झड़पी गति आपवामां आवी रही छे, जेना कारणे आगामी समय में विस्तार में सर्वांगी विकास ने नवी दिशा मळशे। तेमणे जणाव्युं कि रायगांव खाते नवा रेलवे लाइन निर्माण प्रक्रिया झड़पथी आगळ वधी रही छे। पोरबंदर एरपोर्ट विस्तरण सतत प्रयासों कर पोरबंदर अमदावाद वाया मुंबई फ्लाइट सेवा की मंजूरी मिली गई है। पोरबंदर खाते 100 હેક્ટર जमीन पर देश में सौथी अद्यतन फर्नीचर पार्क बनशे। पोरबंदर में केन्द्रीय श्रम रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया अध्यक्षस्थाने विकसित पोरबंदर फर्नीचर पार्क समिति योजाई थी। आ प्रसंगे मंत्रीश्रीए जणाव्युं हतुं कि पोरबंदर में फर्नीचर पार्क थी गुजरात में वैश्विक व्यापार वधशे। आ समिति में देश में फर्नीचर उद्योग साथ संकळायेल उद्योगकारोए केन्द्र और राज्य सरकार की प्रोत्साहक नीति की जानकारी मेळवीने पोरबंदर दरियाकांठे होवाथी वैश्विक व्यापार की विपुल संभावनाने कारणे अनुकूल रहेशे तेवो प्रतिभाव आप्यो हतो। पोरबंदर नजीक फर्नीचर पार्क माटे सूचित साइट नक्की करवामां आवी छे। गुजरात सरकार और भारत सरकार संकलन थी आ प्रोजेक्ट आगामी समय में साकार थशे। आ माटे 100 હેક્ટર जमीन की पसंदगी करवामां आवी छे अने तेने संपादन करवानी कार्यवाही थई रही छे। नायब मुख्यमंत्री हर्ष संघवीए राजकोट खाते ₹74.32 કરોડના खर्चे निर्माण पामेल नवनिर्मित 4 લેન रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज सांधिया पुल लोकार्पण कर्यु। उल्लेखनीय छे कि आ ब्रिज की कुल लंबाई 678 મીટર और कुल पहोळाई 16.24 મીટર छे। रेलवे ट्रेक थी आ पुल की ऊंचाई 6.25 મીટર छे। आ ब्रिज कार्यरत थता अंदाजे 50,000 जेटला वाहनों ने रोजिंदी ट्राफिक समस्यामांथी मुक्ति मळशे। जूनागढ़ जिला में केशोद हवाई मथक में 363 કરોડ रूपया खर्चे नवीनीकरण थी रही है, जेमा पायलट तालीम संस्था निर्माण कराशे। आ प्रोजेक्ट में रनवे ने 1371 મીટર थी 2500 મીટર सुधी लंबावानो और इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सीस्टम स्थापित कराशे। आ अंगे केशोद हवाई मथक नियामक राज कपूर मीणाए वधु माहिती आपी हती।
2: केशोद एयरपोर्ट पे अभी एक टर्मिनल बिल्डिंग बन रही है, जिस टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर जैसे लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स, एरो ब्रिजेस और बाकी जो लेटेस्ट एयरपोर्ट में टर्मिनल बिल्डिंग की जो भी सुविधाएं होती है वो सारी सुविधाएं से इक्विप्ड हमारी टर्मिनल बिल्डिंग होगी। ये सारे विकास कार्य कम्प्लीट होने के बाद में बहुत सारी एयरलाइंस इस एयरपोर्ट में आने में इंटरेस्टेड होंगी।
0: केन्द्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेतृत्व हेठ सेवा सुशासन और जनकल्याण में समर्पित सफल 12 वर्ष पूरा थवाना अवसरे राज्यभर में विविध कार्यक्रम योजाई रहा है। जामनगर एरपोर्ट पर आगामी तारीख 15 में प्रवासी सुविधा दिवस की उजवणी करी अनेकविध लोक उपयोगी कार्यो हाथ धराया है। आ अंगे एरपोर्ट डायरेक्टरे पत्रकारों ने माहिती आपी हती।
3: फ्री हेल्थ चेकअप का प्रोग्राम रखा है, फ्री प्लांटेशन का प्रोग्राम रखा है और बच्चों के लिए पेंटिंग कॉम्पिटिशन रखी है। उसके अलावा हम यहाँ के जो सफाई कर्मचारी है उनके लिए मान करने का हमने व्यवस्था किया है। और वर्कफोर्स इनोवेशन इंडस्ट्री में इस एयरपोर्ट

0: स्मार्ट सिटीज थी दुनिया में चलती आधुनिकता। बुलेट ट्रेन और वंदे भारत में गतिशीलता की दिखाता एक नया भविष्य नाम का भारत में आत्मविश्वास की 4 वर्षीय यात्रा छे गुजरात में अंत्योदय गरीब कल्याण सेवा और सुशासन पीएम आवास हर घर जल किसान सम्मान और आयुष्मान कलश की मजबूत तथा जन जन में आत्मविश्वास ने नगरी को माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल ने प्रयासों की देश में ग्रोथ इंजन गुजरात बनी रहू छे ग्रीन एनर्जी और भविष्य की आधुनिक टेक्नोलॉजी पावर हाउस विकास ने महायज्ञ ने वधु वेगवंत बना विकसित भारत माते विकसित गुजरात के 4 वर्ष विश्वास ना विकास ना जन कल्याण ना।
1: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं।

0: Comme la mer.
1: On va dans la salle, on va choisir, on va caster, j'ai ma boule dans la gueule. पता है जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है तब से नॉर्थ ईस्ट से दुनिया घटी है वाला साल विश्वास के विकास के

0: आकाशवाणी भुज समाचार जागृति वकील वाचे छे। नमस्कार। समग्र देश में वस्ती गणतरी प्रक्रिया 17 मई प्रारंभ करवामां आव्यो छे। प्रथम तबक्काना भागरूपे कच्छ में मुख्यत्वे घरोनी गणतरी करवामां आवी रही छे, जे अंतर्गत तारीख 31 मई सुधी स्वगणतरी नो 11,194 नागरिकोए लाभ लीधो छे। पोर्टल बंद थया बाद 1 जून थी 2,921 गणतरीदारों 2,970 ब्लॉक में घरे घरे जाइने घर गणनानी कामगीरी हाथ धरी छे। त्यारे 12 दिवस में 12 जेटला ब्लॉक में घर गणनानी कामगीरी पूर्ण करी लेवामां आवी छे, तेवुं वस्ती गणतरी विभागना नायब मामलतदार निखिल टाटे जणाव्युं हतुं। आ माटे 10 तालुकाना मामलतदार अने 7 शहेरी विस्तारमां चीफ ऑफिसरना मार्गदर्शनमां थई रहेली आ वस्ती गणतरीनी कामगीरी आगामी तारीख 30 जून सुधी पूरी कराशे। गुजरात पोलीसमां लोक रक्षक दल एलआईडीनी शारीरिक कसोटी पास करनार लाखों उम्मीदवारों माटे आजे फाइनल लेखित परीक्षानुं आयोजन करवामां आव्युं छे। राज्यना 879 केन्द्र पर एलआईडीनी लेखित परीक्षा 2.63 लाखथी वधु उम्मीदवारो आपशे। अत्रे उल्लेखनीय छे कि पोलीस भरती बोर्डनी लोक रक्षक केडरनी शारीरिक परीक्षानुं परिणाम 2 એપ્રિલ 2026 जाहेर करवामां आव्युं हतुं, जेमां कुल 1.73 लाखथी वधु पुरुष उम्मीदवार अने कुल 89,405 महिला उम्मीदवार शारीरिक पश्चिम कच्छ पोलीस अधीक्षक विकास सुंदर अने तेमना धर्मपत्नी द्वारा अनोखी प्रशंसनीय पहल हाथ धरवामां आवी छे। देय खाते 2026 अंतर्गत कच्छना छेवाड़ा विस्तारों में स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करती 50 जेटली जरूरियातमंद बालिकाओं ने छेल्ला 3 महीना थी भूज खाते रहेवा जम्मू अने तालीमनी सुविधा पूरी पाड़वामां आवी। आज राजकोट खाते योजनारी लोक रक्षक भर्ती परीक्षा में जनार तमाम बालिकाओं माटे भूज थी राजकोट अने परत भूज सुधी बस व्यवस्था तथा राजकोट में रहेवा जमवानी सुविधा उपलब्ध करावामां आवी छे। गईकाले भूज महिला कॉलेज होस्टेल खाते बालिकाओं ने कुमकुम तिलक करी मीठू मोढ़ू करावी अने शुभेच्छाओ पाठवी परीक्षा माटे प्रस्थान करावामां आवी छे। विकास सुंदरनी आगेवानी हेठळनी आ पहल युवतीओने पोलीस सेवामां जोड़वाना सपनाने नवी ऊर्जा आपशे। केन्द्र सरकार ने 12 वर्ष विश्वासना विकासना जनकल्याण विकसित भारत संकल्प अंतर्गत स्वच्छता सप्ताह अभियान में कच्छ में धार्मिक और जाहिर स्थलों की सफाई हाथ धराई है। धारासभ्य प्रद्युम्न सिंह जाडेजा सहित जिला और तालुका पदाधिकारी माता नंद और गाम में जाहिर विस्तारों में श्रमदान कर स्वच्छता अभियान में सहभागी बनया था। आ साथ चित्रोड खाते त्रिकम साहब मंदिर अबड़ा तालुका में पिंगलेश्वर महादेव दरिया किनारों मंदिर परिसर कबराव खाते मोगलधाम गोधरा खाते अंबेधाम मंदिर सहित जिले धार्मिक स्थलों सफाई कामगिरी हाथ धरवा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्व हेठ केन्द्र सरकार ने 12 वर्ष विकास विश्वास और जन कल्याण उजवनी अंतर्गत आयोजित विविध कार्यक्रमों भाग रूप प्रगति पथ यात्रा हेठ गई काल एसडीएस रापर खाते विशेष कार्यक्रम योजना जेमा रापर विधानसभा धारासभ्य वीरेन्द्र सिंह जाडेजा द्वारा आरोग्य केन्द्र की मुलाकात लेवाई थी। मुलाकात दरमियान नवनियुक्त डॉक्टर्स आरोग्य कर्मचारियों की टीम साथ चर्चा कर आरोग्य सेवाओं में उत्कृष्ट कामगिरी बदल डॉक्टरों ने सम्मानित करवाया था। भारत अफगानिस्तान में 7 विकेट हरावी बन्ने देशों वच्चे सौ प्रथम वनडे मैच जीती क्रिकेट में महत्व की सफलता मेळवी छे। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला खाते वरसाद प्रभावित प्रथम मैच 25 ओवर में करी नाखवामां आवी हती। अफगानिस्तान टीम ने 194 रन विजय लक्ष्यांक में भारतीय टीम ने 3 विकेट गुमावी 195 रन कर जीती लीधी थी। सुकानी शुभमन गिल 84 और के एल राहुल 39 रन कर नोट आउट रहा था, जारी ईशान किशन ने 34 रन कर अगौ अफगानिस्तान की टीम ने 194 रन कर गुरबाज ने सौथी वधु 102 रन लाया था। भारतीय टीम में गुरनार ब्राय और हर्ष दुबे 3-3 विकेट झड़पी थी। 10वीं महिला विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज भारतीय महिला क्रिकेट टीम में प्रथम मुकाबला परंपरागत स्पर्धक पाकिस्तानी टीम साथ करशे। आ मैच आज सांजे 7 वगे इंग्लैंड में बर्मिंगहाम खाते योजाशे। 24 दिवस की टूर्नामेंट में भारतीय टीमों वच्चे 33 मैच रमाशे। राज्य साथ कच्छ में चौमा में आगमन राह जोवाई रही है, तरह जिले में महत्तम तापमान फरी 40 डिग्री पहुंचता जनजीवन आखो व्याघू बनु। लघुत्तम तापमान पारो 28-29 डिग्री रहता भेजन पानी वत्ता बपोरे जोर वधु जवाब। समाचार बुलेटिन पूरु थयु। नमस्कार।
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार जय श्री राम वांचे छे। सर्वप्रथम मुख्य समाचार।
2: फ्रांस की मुलाकात पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति मैक्रोन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इंडिया यूनिवर्स कार्यक्रम में संयुक्त रीते उद्घाटन करेंगे।

Ese es en el T20 Vishwa Cup Majapara, Pakistan Senator Karisha. And a prime match in the Eka Divasiya Cricket Training to him, match one, Barake. Samachar Vikatwar. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और नए स्लोवाकिया ने बड़े देशों में मुलाकात में प्रथम तबक्के में फ्रांस ने नाइस पहुंचा से जी सात सम्मेलन में हाजिरी आपका उपरांत श्री मोदी फ्रांस ने राष्ट्रपति मैक्रोन के द्विपक्षीय वाटाघाटो को श्रे भारतीय शैक्षणिक संस्थाओं ने वैश्विक रोकाणकारों और बाजारों साथ जुड़ता शिक्षण मंत्रालय ने कार्यक्रम इंडियन इनोवेटर्स ने संयुक्त रीते उद्घाटन कर श्रे तथा प्रादेशिक और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा कर श्रे

very much in position in summer, actually versus story, drone आधारित तपास सेवा शुरू करने की योजना छे। मंत्रालय मरीन के मंडी मुख्य पोस्ट ऑफिस से 12 किलोमीटर दूर स्थित रेडर शाखा सुधी पहुंचवा में 2 कलाक के वधु समय लगे छे। ड्रोन सेवा समय आ घटाड़ी ने मात्र 7 मिनट में करशे। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में 3 मैच की एक दिवसीय क्रिकेट श्रेणी की पहली मैच में भारत और अफगानिस्तान ने 7 विकेट से पराजय आप भारत 22 ओवर 5 बॉल में 155 रन।

रात्रि 10 वाजे रविवार संगीत सभा अंतर्गत जे एस श्रीराम नु कर्नाटकी शास्त्रीय गायन दिल्ली केंद्र थी रिले करीशुं।

0: घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभाग के साथ मैं नीतीश कुमार।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।

0: olan Bharat Innovation'dan çıkabildi. Bharat France Innovation varış kadar ayıcıdız karakterini 120 sezyada Bharatiya Startup'ı sat sat başlık Innovation CEO ve Teknoloji Lidas hissalini. İske Afrika Dominator Teknoloji, Rakşa Innovation और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो स्लोवाकिया के लिए यात्रा है वो बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि वो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो इससे हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रभाव होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशन को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहे हैं जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और सीएसआईआर ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहड़धर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहड़धर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर

0: योजनाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चिन्हित की जा रही।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में

ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडंगी मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की।

0: विज्ञान से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनी के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमेनी के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले

सुरक्षित क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7-0 से हरा दिया। पहली बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल में माहे, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में

पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है।

भविष्य को दिशा देगी। युवाओं की उपलब्धियाँ विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार INA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत।

प्रस्तावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया।

कामयाब भी हुई और अंतिम मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे।

0: Hello, phoning at me, person.
1: Akashwani Bhuj.
0: Haan ji, Akashwani Bhuj.
1: Namaskar, ma'am.
0: Namaskar.
1: Taluka Kokre, Jilla Banaskantha, Ram Ratan Bhede, Nawara Riviyana Ji, Kaka Rakha Ji, Sharup Ji, Bolo Chuma Nama Ji.
0: Ji, Ji, Kem Chho?
1: Saru Sa, ma'am, Ekdam.
0: Taan Garmi Kevi Chhe?
1: Garmi Ta Bohat Padegi Chhe, Ava Ji Khob Chhe.
0: हाँ हाँ बस अवे अपने वरसाद में राह जोइए।
1: अरे हमें हमारे खेती बाड़ी से हमें वरसाद में राह जोइए बैठा के बैठ।
0: सरस सरस तो जाओ आज क्यों गीत संभर शो?
1: आज एक गीत।
0: हाँ
1: आपने गीत हो रही है तो कौन ना प्यार मारी गन्ना थी
0: कौन पर अच्छा हाँ ना आपने साथ में कौन कौन से
1: हमारी साथी से हमारे भाई बहन से आवाज से अने आए भाई पत्नी से मेरे बहन की ना या सोनल बहन से
0: हाँ
1: अने निकल बहन से भगवती बहन से अने हमारे नाम को बच्चन से जानती है हमारे प्रतिनिधि बहन से हमारे मम्मी नंदा बहन से अभी तो मेरे बदन जी से करवा जी से महबूब भाई से अने मनोज भाई से खाना मीठू हमने साथ में बनने का हमारा प्रोग्राम मोबाइल फोन ऊपर हमने वगैरह से नंबर रिकॉर्डिंग बात हुआ गए थे
0: चौकस तो आपने पसंद की नो गीत संभरा भी दिए
1: आप नमस्कार तो
0: ओके नमस्कार

0: हेलो आकाशवाणी बोस
1: नमस्कार
2: અમીર ભાઈ છે અફસલ ભાઈ છે

0: जी जी बहुत सरस
1: हाँ बेन आओ जो
0: आओ जो

0: आकाशवाणी भोज जी जी जी कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ।
0: तो आज बताइए कौन सा गाना सुनेंगे?
1: बिल्कुल मैम, मैं गाना तो जरूर सुनूंगा। जैसे कि आज रक्त दिवस है तो मैंने रक्त भी दान किया हुआ है और आपके माध्यम से सभी लोगों से मैं ये अपील करता हूँ कि रक्त हम लोगों को दान करते रहना चाहिए हर तीन महीने में। रक्त दान करने से कोई भी वीकनेस नहीं होती है और जबकि मानव का दिमाग है हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं, ऐसा उनको काम करना चाहिए। हो सके तो अपने जीवन में अपने परिवार और अपने रिश्ते मोह माया छोड़ के ये दान का संकल्प भी ले लिया।
0: बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही कहा आपने।
1: मैम मूवी का नाम है कल हो न हो, जिसमें गाना रहेगा माहिरी
0: जी। जी बहुत सुंदर गाना है
1: मैम। कुछ दोस्तों को याद करना चाहते थे।
0: हाँ जी
1: जी, हमारे मित्र हैं पूरन वर्मा जी, अविनाश जी, राकेश जी, पुरुषोत्तम कुमार जी और हमारे मित्र हैं

0: तो उन मर जे वो सिंह तो छछु मर जे वो पहना हो पापो छु तो कीड़ा नो पापो छु एवा माए चकली जी फर फरती आवी जी राजी राजी गरी थी चकली चरणो चढ़ी गई आभार
1: शुवात छे गुरुदा मने तो खूब मजा आवी तने आवी के नहीं जिंदगी में जीत और हार तो हमारी सोच बनाती है जिंदगी में जीत और हार तो हमारी सोच बनाती है जो मान लेता है वो हार जाता है जो मान लेता है वो हार जाता है जो ठान लेता है वो जीत जाता है हमें वो कार्यक्रम ने अगर बताता बोलावा मांगू छु सौभाग्यनी विद्यार्थिनी मैम साहेबा ने जो तुम्हारी सामने एक वार्ता प्रस्तुत कर से वार्ता नु नाम छे तरसो कागड़ो
2: મારું નામ છે મેમર સાહેબા સાબિરુસર હું સોપાન બેમાં અભ્યાસ કરું છું વાર્તાનું નામ છે તરસ્યો કાગરો એક ઉનાળાના દિવસ હતા એક કાગરાને સખત ગરમી પડતી હતી તો પારીના શોધમાં આમ તેમ ઉડવા લાગ્યો

हमारा खीस तो पहले ऊपर आई जैसे तो काबिया ने एक दो तीन चार पाँच छ एक एक करी ने कुंजा मना था पक्षी पारी थी नदी।

después está chiqui. Yo la fui a pirata. Yo, que hay una tiene mi yo labio. Arena, no, dejo, ya, verdad, el dios mate en la tía, veo. Facto, sabe, el dios mate, ya veo, chu. Te ha dado chimaro, dicro, a usted, animal y rey, ya sé. प्यारी माँ पे बातें जिसने हजार लिखी हैं, प्यारी माँ पे बातें जिसने हजार लिखी हैं, माँ उसके भी वृद्धाश्रम में बीमार पड़ी हैं, माँ उसके भी वृद्धाश्रम में बीमार पड़ी हैं। खूबस सरस आशा छे के तमने बताने का लघु नाटिका थी बोध पर मरी हसे और आनंद पर मरी हसे तो हरे तैयार थी जाओ तुम्हारी आज की एंकर एटले के हूँ सुमरात के मुनाफ ने प्रस्तुति सांभवा तो हूँ तुमने अपनी युवा पेढ़ी जो व्यसन ने जाल में सपड़ाई गई है एना विषय कहीश अपनी एक जूनी पुरानी कहवत छे नशो नोत्रे नाश आज तो एटले ज प्रचलित छे आपणे सौ व्यसन थी थतुं नुकसान चोक्कसपणे जाणीए छीए तेम छतां दिन प्रतिदिन व्यसन जाल में सपड़ाता लोगों की संख्या घटवानी जगह वधती जाय छे देवो ने पण दुर्लभ तमोने मळ्यो छे मानव जीवन अद्भुत देवो ने पण दुर्लभ

0: açıp keyfin Yusuf Şah Geyit Apsan'ı da hatayla tanın geçirmez var mı?
1: पंकज तू दरियो खिड़वा जाए छे तो आ नंबर ध्यान दी गोखी 1093 आ नंबर कोनो छे पप्पा आ नंबर छे कोस्टल हेल्पलाइन नो दरियो में अडानी बोट सीजन वगैरह माछी मारी गैर कायदेसर बांधकाम ने शंकास्पद व्यक्ति ने बोट गुनेगारो स्मगलर के अंदर कोई हिलचाल दिखाए तो तुरंत ज 1093 डायल करे आ नंबर 24 कलाक चालू होय छे तो गमे त्यारे आ नंबर पर थी मरीन पुलिस की मदद मेळी शके छे समझो ने आपने सजागता अनेक खिलाड़ी आपके दरियाई सुरक्षा की राष्ट्र सुरक्षा की खातिर गुजरात मरीन पुलिस द्वारा जनहित में प्रसारित
0: कागज के नाव आ फिल्म में समरी है आशा भोसले ने।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में

0: ובהסל, ובשוואסקי, ובקאסקי, ג'נפלארקי. पता है जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं
1: दिल्ली के
0: विकास के विश्वास के विकास के जनक

0: चीनी के मोबाइल नंबर के बैंकिंग ऐप के पत्र द्वारा विनिश का घोषणा करो। यानी जो कोई बदलाव हो रहे वो होकर अरे सरनामा लो सौकी नव प्रमाण बताओ। आपको सक्रिय राशि ने बैंकिंग सेवाओं नो लाभ उठाओ। तुम्हारो केवाईसी अपडेट करावा माटे तुम्हारा नजीक ना ग्राम पंचायत कैंप के बैंक की शाखा में जाओ।
1: RBI कहे थे जानकार बनो सतर्क रहो।
2: छेल्ला 12 वर्षथी विकासना संकल्पो कदी अटकता नथी। पुरुषार्थ की गाथाओ क्यारे

0: ser como la más forma de tanto forma de hablar, ¿no?
1: जानते हो दोस्तों, जैसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल के भी पास है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब जीते भी पास है, जीते भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: pues en realidad te amo mucho, la fin.
1: जैसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट
1: साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: कार्यक्रम में समय समय समय

0: कॉल नंबर ध्यान दी गुखे 0093
1: आ नंबर कौन से पप्पा
0: आ नंबर से कोस्टल हेल्पलाइन नो दरिया में अदानी बोट सीजन वगैरह माछी मारी घर कैसे सर बांधकाम शंकास्पद व्यक्ति ने बोट गुनेगारो स्मगलर के अंदर कोई हिलचाल देखा है तो तुरंत 0093 डायल करे आ नंबर 24 कलाक चालू हो तो गमे तेरे आ नंबर पर टीम भरी पुलिस की मदद मिली सके समझो लेगा आपने सजा बता अनिता किनारी आप दरियाई सुरक्षा

0: राष्ट्र सुरक्षा की खातिर गुजरात ग्रीन पुलिस द्वारा जनहित में प्रसारित
1: कार्यक्रम में समापन में सभी रघुवीर पंचालानी स्वर।

उधर तो हंसी हो इधर दिल जवा है, ये रंगीन रातों की एक गाथा है। उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवा है, ये रंगीन रातों की एक गाथा है।

0: दिखा ले मेरे प्यार को,
1: दिखाए मेरे प्यार को।

संदेशों हावड़ा ब्रिज फिल्म नु आ गीत गीता दत्तनी स्वरमा बोल कमर जलालाबादी ना गुण पल्टी नैयर नी।

भारतवर्षना शुकदेव जी, जयदेव, विद्यापति, चंडीदास, सुरदास, वैष्णव भक्त कवियो अने कबीर परंपराना अनेक संत कवियो बाण साहेब, रवि साहेब, खीम साहेब, त्रिकम साहेब, मोरार साहेब, गंग साहेब, केटला बधा संत कवियो अने छेक नरसिंह थी मांडी ने दयाराम सुधी आपने जे गुजराती संत भक्त कवियो मळे छे एने भगवान कृष्ण नी लीला तो वारंवार गाय छे। प्रेम लक्षणा भक्ति नु गान कर्युं छे अने एमा संत कवयित्री मीराबाई एम कहता होय के प्रेमनी प्रेमनी प्रेमनी रे मुने लागी कटारी प्रेमनी हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई अथवा तो प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर प्रेम नगर मत जाना आ मीराबाई नी वाणी अने ए सतत सतत भगवान गोविंदा ने याद करता होय प्रेम लक्षणा भक्ति मा एनु विरह गान करता होय अने गोविंदो प्राण हमारो रे मने जग लायगो खारो मने मारो रामजी भावे रे बीजू मारी नजरे नावे

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सैफ फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ 19वें भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप, निवेशक और टेक्नोलॉजी लीडर्स शामिल होंगे। कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा ऐसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजासराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग और वस्त्र परीक्षण सहित प्रमुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। ये केंद्र उन्नत विनिर्माण सुविधाएं, तकनीकी सहायता और उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत

के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जून का महीना अपने साथ कई महत्वपूर्ण संदेश लेकर आता है। आज का दिन यानी 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत जनसंख्या नहीं बल्कि संवेदनशीलता और सेवा भाव है। हर साल आज के दिन का उद्देश्य उन लाखों स्वयं सेवी रक्तदाताओं का सम्मान करना है जो दूसरों का जीवन बचाने में योगदान देते हैं। रक्त या खून का कोई विकल्प नहीं है, इसे फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता। ये एक ऐसी चीज है जिसमें सिर्फ इंसान ही इंसान के काम आता है। दुर्घटनाओं, बड़े ऑपरेशन एवं सर्जरी, प्रसव, थैलेसीमिया जैसी बीमारियों से जूझ रहे रोगियों के लिए रक्तदान एक जीवनदान बन जाता है। हम सब जानते हैं कि युद्ध जैसी आफत के समय में रक्त का क्या महत्व होता है, और यह भी बड़ी सम्मान की बात है कि हमारी सेना की तीनों पांख जल, थल और वायु सेना की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप अर्थात रक्तदान शिविरों का आयोजन बार बार होता है। आजकल तो कॉलेजेस में, सोसाइटीज में और कुछ स्वैच्छिक संस्थाओं में भी रक्तदान शिविर का आयोजन होता है। रक्तदान करने के लिए सबसे कम आयु 18 वर्ष की है और कोई भी तंदुरुस्त व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। तो आइए इस दिशा में विचार करें और हमसे जितना भी हो उतना योगदान अवश्य दें। तो आइए आज के इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं प्रेम पुजारी फिल्म के इस गाने के साथ, मोहम्मद रफी, मुन्नावे और साथियों के स्वर में। गीतकार है नीरज, संगीतकार है एस डी बर्मन।

अब हमें आगे सुनते हैं बसेरा फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार है गुलजार और संगीतकार है राहुल देव बर्मन।

0: कार्यक्रम में आगे सुनते हैं फिर सुबह होगी फिल्म का ये गीत मुकेश और आशा भोसले की आवाज में। बोल है सहर लुधियानवी के, संगीत से सवारा है खयाम ने।
1: ओ सुबह कभी ओ

आइए सुनते हैं मोहरा फिल्म का ये गाना, जिसे सुर से सवारा है उदित नारायण और साधना सरगम ने। बोल है आनंद बख्शी के, धुन है विजय शाह की।

0: सुन सकते हैं भूख फिल्म का ये गाना आशा भोसले और दिलराज कौर की आवाजों में। गीतकार है वर्मा मलिक, संगीतकार है सोनिक ओमी।
1: करने वाले ये नहीं समझते।

0: होते हुए जख्मों से घबराना नहीं बेटी, इन जख्मों की मौत अपने आप।
1: आइए सुनते हैं मैंने प्यार किया फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाजों में। गीतकार है देव कोहली, संगीतकार है राम लक्ष्मण।

श्रोताओं, आइए अब स्वस्थ जीवन की एक और आधारशिला की बात करते हैं, योग की। आज योग केवल भारत तक सीमित नहीं है, विश्व के लगभग हर देश में लोग योग को अपने दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं। योग केवल व्यायाम नहीं है, एक जीवन प्रणाली है जिसमें संतुलित आहार और प्रकृति के साथ जुड़े नियम भी शामिल है। योग हमारे भारत की प्राचीन परंपराओं और आधुनिक विज्ञान का अद्भुत समन्वय है। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्वीकारा है और तब से पूरी दुनिया इस दिन को बड़े उत्साह से मनाती है। योग एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी उम्र की व्यक्ति अपना सकती है। आइए आशा करें कि योग का महत्व जन जन तक और घर घर तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति योग की महिमा को समझे और उसे अपनाकर मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ जीवन जिए। तो आइए हमारे कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं तवाफ फिल्म के इस गीत के साथ, आशा भोसले और साथियों के स्वर में। वो है हसन कमाल के, संगीत से सवारा है रवि ने।

आइए सुनते हैं कपिलपट्टनम फिल्म का ये गाना किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन।

ही सुनते हैं चोरी चोरी फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। गीतकार है हसरत जयपुरी।

0: आइए सुनते हैं दिल्ली का ठग फिल्म का ये गाना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। बोल है शैलेंद्र के, संगीत से सवारा है रवि ने।
1: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा

इस गाने के साथ ही आज का जय भारती कार्यक्रम समाप्त होता है। जय जवान।

आकाशवाणी अहमदाबाद बड़ौदा राजकोट और भूज 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में सुनेंगे दोपहर समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
1: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
2: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। मिचलिका एंसेंबल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। सेठी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुंच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बने उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। यह सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायण ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कोलंबो के गोलफिश ग्रीन में आज इतिहास रच गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन में

0: शख्स की मृत्यु की वैश्विक लोक प्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायोग संतोष झा ने कलाकारों व आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। आकाशवाणी समाचार
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मुज जलडमरु मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाखाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमरीका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाही राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मॉनसून और ओया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
2: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ो पीठा, अरिसा पीठा, चकोली पीठा और पशु गजर पान की खुशबू फैली हुई है। राजा नायिका और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रतिमाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में

कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मारुति संगीत पाठशाला के बच्चे हैं आप लोग, तो आज हम एक नया गाना सिखाएंगे। किसने लिखा है मालूम है? गड़बड़ंगी गौड़ा। किसने लिखा है गाना?
1: गड़बड़ंगी गौड़ा।
0: तो आप गाना सीखने के लिए तैयार हैं?
1: तैयार है।
0: इस गाने का शीर्षक है कदल हक्की गलू। क्या है?
1: कदल हक्की गलू।
0: तो पहले क्या करना है, इस गाने को लिख लेना है, तो बाद में हम गा सकते हैं, नहीं तो नहीं गा सकते है ना। तो पहले क्या करना है, पेन पेंसिल पेपर सब उठा के अपने आगे रख लेना है। अच्छा, तो मैं डिक्टेट करती हूँ, आप सब लिख लीजिए। कदल करेय खगकुला,
1: कदल करेय खगकुला,
0: एनिक मुगिल
1: एनिक मुगिल,
0: उद्द अगल
1: उद्द अगल,
0: जी की दनितु बांदरा
1: बांदरा।
0: अच्छा, तो एक पहला स्टंजा है, आगे का स्टंजा है, बान लोक नगुआ नाका,
1: बान लोक नगुआ नाका,
0: हारो हक्की पालीगे,
1: हारो हक्की पालीगे,
0: रेक्के बीसी धैर्य सूसी,
1: रेक्के बीसी धैर्य सूसी,
0: चुक्की मुट्टो हमीगे,
1: चुक्की मुट्टो हमीगे।
0: लिखिया?
1: हाँ।
0: सब लोग लिखिया?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो अगला स्टंजा, दूर दूर हारी हारी,
1: दूर दूर हारी हारी,
0: व्योम कानुआ बगे,
1: व्योम कानुआ बगे,
0: हसी व मरेसी,
1: हसी व मरेसी,
0: वांछे मरेसी,
1: वांछे मरेसी,
0: दिगंत तेरो लघु बगे,
1: दिगंत तेरो लघु बगे।
0: तो अब बच्चे आप फिर स्टैंजा अभी सुन दो, लिखो चले। याव नाडो यंथ काडो,
1: याव नाडो यंथ काडो,
0: हारो आसे हक्कीगे,
1: हारो आसे हक्कीगे,
0: मुक्त गगन नूरु काला,
1: मुक्त गगन नूरु काला,
0: ईजो शक्ति रेक्केगे,
1: ईजो शक्ति रेक्केगे।
0: तो सब लोग एक गाना तो लिख लिया। अभी तक कैसे गाना, किस तरह गाना, एक मालूम है ना?
1: हाँ।
0: अच्छा जी, जरा चुपके रहने, गीता जी आ रही है, दीदी जिसको हम रिक्वेस्ट कर देंगे।
2: हाँ।
0: गीता जी आइए यहाँ, हमारे बच्चे सब एक गाना सीखना चाहते हैं, इसके आरोह अवरोह क्या है ये बताइए।

0: लिए जो स्वर आते हैं वे भी सुन लीजिए।
1: वान लोकन भुवना का माम माम गम गभी सभी।

0: दूसरे अंतर का धुन कैसा है ये मालूम हो गया, मगर जो स्वर आते हैं वो नहीं मालूम हो रहे ना, तो गीता दीदी स्वर को भी सिखाती है।
1: दूर दूर हारी हारी निशा सा, निशा सा, सा, सा, सा।

अच्छा तो गाते हैं।

0: तो बच्चों, अब इस पूरे गाने की धुन आप याद हो गई है ना? अब घर पे जाके खूब प्रैक्टिस करना, तो आप सब लोगों को ये गाना बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी, करेंगे ना? अच्छा बच्चों, तो नमस्कार।
1: आप समझ रहे हैं तो संघ गान शिक्षण। आज आप सांभ्यो कन्नड़ भाषा में गीत जो मैं बोल हता हारती हो गीतकार बी आर गीता। प्रसारण आकाशवाणी ना अमदावाद वडोदरा केन्द्र पर थी करवामां आव्युं।

0: किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और फ्रांस के मजबूत संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने भारत फ्रांस साझेदारी को ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझे मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कनेक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहलें शुरू की।

0: राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत के बाहर इस विशेष पहल की मेजबानी को फ्रांस के लिए सम्मान का विषय बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को न केवल अपार प्रतिभाओं से संपन्न देश के रूप में देख रही है, बल्कि नवाचार के देश और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी शक्ति के रूप में भी देख रही है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद और इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति सहित कई प्रमुख व्यापारिक नेता भी उपस्थित थे। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के बाद में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों आज भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रतिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि राज्य को राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, रेलवे परियोजनाओं और बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक गलियारा परियोजना के लिए भी बड़ी राशि दी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर में 7 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खाते में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 के इंजन में खराबी आने की जानकारी दी है। इसमें सवार 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल से बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। अंटालिया में तिरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बुमरा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहर ने रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओह ये जिन और किम जे डेव को 5-1 से हराया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का यह मैच बर्मिंगम के एजबेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi and President of France Emmanuel Macron today jointly inaugurated Bharat Elevates event at Palais des Expositions in Nice, France. The flagship event being held under the India-France Era of Innovation brings together top innovation startups and venture capital firms from India, France and other countries. It features innovations across 13 key sectors including advanced computing, semiconductors, artificial intelligence, quantum technologies, space technology, clean energy and biotechnology. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi highlighted the strength of India-France ties. He said, while many nations engage in trade and strategic cooperation, only a few relationships are guided by a shared vision as well as common interests.
2: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है।
1: Addressing the gathering, French President Macron also described it as an honor for France to host the first edition of the initiative outside India. He said the world increasingly sees India not only as a country with immense talent, but as a nation of innovation and a disruptive force in technology. a country with 1.4 billion inhabitants, a country based on know-how and research, knowledge and training, as many engineers as Europe and the US, more than 1 million per year. So in every respect, the country with research, innovations and frontier models is spearheading global innovation.
0: External Affairs Minister Dr. Jaishankar, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, National Security Advisor Ajit Doval, Principal Scientific Advisor Ajay Kumar Sood, Infosys founder Narayan Murthy, and several prominent business leaders were also present on the occasion. Speaking at the event, Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said, India is emerging as a trusted and reliable partner at a time of global geopolitical and technological transformation.
3: The world seeks trusted and reliable partners. And that is what India brings to the table. We bring the energy of the world's youngest large nation, the finest talent pool available, and a scale that few can match.
0: Ahead of the event, Prime Minister Modi also interacted with leading investors, venture capitalists, and innovators participating in the landmark India-France Innovation Showcase. Later in the day, Prime Minister Modi and President Macron will hold bilateral talks to review progress in the India-France Special Global Strategic Partnership and discuss key regional and global issues. The Indian Embassy in Oman said that an Indian-flagged mechanized sailing vessel Virat I carrying around 14 Indian experienced an engine failure off the coast of Oman. In a social media post, the embassy informed that the crew were transferred safely to a life raft. The embassy added that the rescue operation is presently underway through ships in vicinity under coordination of Oman authorities. Sources said that the vessel sailed because of mechanical failure. Iran has said it has not yet taken a final decision on the proposed memorandum of understanding aimed at ending tensions with the United States and Israel. Iranian media said the political, legal, and technical reviews on the proposed deal are still underway. Meanwhile, a Qatari delegation arrived in Tehran to hold consultations with Iranian officials and facilitate diplomatic exchanges between Iran and the United States. The developments come amid ongoing negotiations with U.S. President Donald Trump expressing hope that a framework agreement could be reached soon. In archery, India's Dheeraj Bhumi Davara and teenager Kumkum Mohad placed the gold medal in recurve mixed team event at the World Cup Stage 3 at Antalya in Turkey today. The Indian duo produced a brilliant display to upset reigning Olympian champions Oh Yeo-jun and Kim Ji-dong of South Korea 5-1 in the finals. It was the first World Cup gold medal for both Dheeraj and Kumkum in the mixed team event. In cricket, India will begin their ICC Women's T20 World Cup campaign against arch-rivals Pakistan in a Group A match at Edgbaston in Birmingham today. The match is scheduled to start at 7 p.m. Indian time. And in the FIFA World Cup 26, Germany will take on Croco in a Group A clash at Houston in the United States tonight. The match is scheduled to begin at 10:30 p.m. Indian standard time.

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिसे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: दरअसल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं। दरअसल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। अरे सिकंदर, तू अत्यारे दरिया जाए छे?
2: अरे ना भाई ना, मने खबर छे के मानसून के दरमियान दरिया ना जवाए, हमें माछी मारी ना कराए, समझो?
0: ए बराबर, मानसून ब्रेक दरमियान दरियो खेलो एक गंभीर एवं सजा पात्र गुना छे। अरे हाँ, जो कोई अजाणी अथवा शंकास्पद व्यक्ति के बोट दरिया में देखा है, तो तात्कालिक 1093 पर कॉल करी मरीन पुलिस ने जान कर दी। आपकी सजागता अन्य तकदारी, आप एक दरियाई सुरक्षा की खातिर।

जाना। सफर छोड़ना नर्मदा की जल समृद्ध खटी धरान, स्मार्ट सिटीज थी दुनिया में चमकती आधुनिकता, बुलेट ट्रेन और वंदे भारत में गतिशीलता की लिखाता एक नया भविष्य में, और गगनयान का भारत में आत्मविश्वास है। 12 वर्षीय यात्रा छे गुजरात में अंत्योदय और गरीब कल्याण, सेवा और सुशासन, पीएम आवास, हर घर जल, किसान सम्मान और आयुष्मान कवच थी मजबूत थका जन जन में आत्मविश्वास ने, और माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल प्रयासों की देश में ग्रोथ इंजन गुजरात बनी रहा है। ग्रीन एनर्जी और भविष्य की आधुनिक टेक्नोलॉजी में पावर हाउस और विकास में महायज्ञ ने मधु वेगवंतो बना दिए, विकसित भारत माटे विकसित गुजरात बना दिए, बार विश्व विश्वास ना विकास ना जन कल्याण ना।

0: यात्रा छोड़े चलना 12 वर्ष के विकास में समर्पित यशस्वी वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ने नेतृत्व में 12 वर्ष विश्वास न विकास न जन कल्याण न सफर छह में नर्मदा की जल समृद्ध थी धरान स्मार्ट सिटीज थी दुनिया में चमकती आधुनिकता बुलेट ट्रेन और वंदे भारत की गतिशीलता थी लखाता एक नवा भविष्य में गागा नाम का भारत में आत्मविश्वास है। 12 वर्ष की आ यात्रा छे गुजरात में अंत्योदय और गरीब कल्याण सेवा और सुशासन पीएम आवास हर घर जल किसान सम्मान और आयुष्मान कवच थी मजबूत थता जन जन में आत्मविश्वास ने हरेक माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल ना प्रयासों की देश नु ग्रोथ इंजीन गुजरात बनी रहू छे ग्रीन एनर्जी भविष्य की आधुनिक टेक्नोलॉजी में पावर हाउस विकास में महायज्ञ ने वधु वेगवंतो बना दिए विकसित भारत माटे विकसित गुजरात बना दिए 12 वर्ष विश्वास न विकास न जन कल्याण न
1: बाबू घड़िए जाए छे तो भूले चुके थे IMBM मजीद जाते नहीं हो क्या माछीमारी करनी गुनो छे खबर छे मैं
2: हाँ बापू मने खबर छे कि पाकिस्तान IMBL ओरंगी ने माछीमारी करता आपने माछीमारों को अपहरण करी तेमना जेल में

नमस्ते, हीअ आकाशवाणी आहे। हींअर तव्हां गीता भाटिया खां ॿुधंदा सिंधीअ में समाचार। सभ खां अवल ख़ासि ख़ासि ख़बरूं।

विजय तफसील सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आज नीस के पैलेस डेस एक्सपोजिशन में भारत इनोवेट्स जो गजल नमूने इफ्तिता कर भारत फ्रांस इनोवेशन के साल हेठ मुंतजिम यो खास कार्यक्रम भारत फ्रांस से बन मुल्क के उच्च दर्जे के इनोवेशन स्टार्टअप्स और मोदी सीरपकार के इनमें शामिल कर इनमें एडवांस कंप्यूटिंग सेमीकंडक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वांटम टेक्नोलॉजी स्पेस टेक्नोलॉजी ए बायोटेक्नोलॉजी से गड 13 अहम किस्म जहा खोजना कार्य शाय कया।

मान्यता के ॻाल्हाईंदे प्रधानमंत्री मोदी भारत फ्रांस बहामी लाॻापन जी मज़बूतीअ ते ज़ोर ॾिनो। श्री मोदी चयो त जिते केतिरा ई मुल्क सिर्फ़ वापार ऐं रणनीतिक रिश्तनि ताईं महदूद रहिया आहिनि, पर तमामु घटि अहिड़ा लाॻापा आहिनि जेके हिक गॾियल ख़्वाब ऐं गॾियल मुफ़ादनि सां जुड़ियल आहिनि। प्रधानमंत्रीअ भारत फ्रांस भाईवारीअ खे अहिड़े दायम रिश्ते तौर ॿुधायो जेको आपसी विश्वास, सहकार ऐं आईंदे लाइ वंडल नज़रिये खे रखे थो। प्रधानमंत्रीअ चयो

0: बौद्ध फैलन में दो औरतों और एक बार भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ओमान में आये भारतीय सफारतखाने बुधाय है तो लगभग 14 क्रू मेंबर खड़ी वेंद भारतीय झंडे वालों सामुंडी बेड़ो विराट वन ओमान के सामुंडी किनारे वे जो इंजन में खराबी जो शिकार है। सोशल मीडिया पोस्ट में एम्बेसी इतला भी दिनी है तो वैसल के मेंबरों के बासलामत लाइफ राफ्ट में पहुंचा वो है। भारतीय सफारतखाने पारा मिलल अहवा मुताबिक ओमान सरकार की मदद से बचाव कार्य जारी है ने 14 में 11 मेंबरों के बचाव है बाकी की तलाश जारी है। श्रीलंका के कोलंबो में अजय पंजन हजारों का भी वधिक नाच कलाकार भरतनाट्यम जो एक शानदार नुमाओ पेश कयो। एक अहवाल
1: कोलंबो के डॉल्फिन ग्रीन में आज तारीख खत्म की गई। 5000 से ज्यादा भरतनाट्यम फनकारों ने एक साथ परफॉर्म करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम डांस क्लास का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। रंग ताल और रिवायत के शानदार इंतजाम ने पूरे माहौल को एक सकाफती जश्न में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद आया अजमेर को पहुंचाने वाला ये तारीखी प्रोग्राम भारतीय क्लासिक रक्स की आलमी मकबूलियत को नई बुलंदियों तक ले गया है। इस काम
0: लंदन में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत पहले मैच में पाकिस्तान से खेलों ग्रुप ई जो ए जो इो मैच बर्मिंगम के एसबी स्टैंड में भारतीय वक्त मुताबिक शाम जो 7 बजे का शुरू थी। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत हेल तीन पाकिस्तान के 16-13 मैच में शिकस्त किया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज अमरीका के हॉस्टन में ग्रुप ई मुकाबले में जर्मनी जो सामनो क्वालिफायर थी। मैच भारतीय वक्त मुताबिक रात जो 9:30 बजे शुरू थी। एक बी मैच में रात 1:30 बजे नीदरलैंड्स जो सामनो जापान से थी। आखिर में खास खबरों एक बार बेहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने फ्रांस के न्यूज़

જમીનમાં લીમડો, બોર, પીપળ, પીપળું જેવા અનેક વૃક્ષોની

एक हेतु अधिक उपयोग में लाते हैं। योग्या सारंगी संज्ञा इसलिए दी कि योग्यों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता रहा। अलाभु सारंगी का प्रयोग विशेषकर जैसलमेर क्षेत्र में अधिक होता है। मंजनिया जाति के लोग अलाभु सारंगी बजाते हैं। इन सभी सारंगियों में सामान्यतः मुख्य दो लोहे के तार, दो ताप के तार और 9, 11 अथवा 17 तरबे लगाई जाती है। भारत की लोक परंपराओं में प्रचलित सिंधी, जोगिया, अलाभु, धामी और गुजराती सारंगी के आकार, प्रकार, बनावट और तारों की संख्या में और इन्हें मिलाने की पद्धति में बहुत कुछ समानता दिखाई देती है। ये सभी सारंगियां गज से बजाई जाती है। विशेष अंचल में तथा विशेष जाति के लोगों द्वारा इसे प्रयुक्त किए जाने के कारण सारंगी के साथ इसका नाम जुड़ गया। सारंगी विशेषकर उत्तर भारत के राजस्थान, गुजरात, कश्मीर आदि भागों में प्रचलित है। सामान्यतः ये लोकगीतों के साथ संगत हेतु उपयोग में लाई जाती है। इसे खड़े रहकर और बैठकर दोनों ही प्रकार से बजाया जाता है। कुछ लोग इसे विदेशी वाद्य बताते हैं, किंतु विभिन्न सारंगियों के वर्णन से यह स्पष्ट है कि सारंगी यह पूर्णतः भारतीय वाद्य है और न केवल शास्त्रीय संगीत में बल्कि लोक संगीत में भी इसकी जड़ें गहरी जमी हुई है। शास्त्रीय संगीत के पुरातन पद्धति के एक कलाकार हुए उस्ताद गुरु खां। तो आइए हम इन्हीं का रिकॉर्ड किया हुआ राग भैरवी सुनते हैं। यह रिकॉर्ड सन 1900

समय के अनुसार सारंगी के टोन में भी परिवर्तन होते रहा है। अभी हमने उस्ताद बूडू खां का सारंगी वादन सुना, अब हम उस्ताद सुल्तान खां का सारंगी वादन सुनते हैं, राग है देश। इसे सुनकर पुराने और नए सारंगी के टोन का अंतर समझ में आ जाएगा।

0: समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर खासतौर से चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल है। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया। तीन दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव परिवर्तनकारी अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव परिवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कनेक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: फ्रांस के राष्ट्रपति ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, विशाल प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करते हैं। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
0: इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी का वहां स्लोवाक शैली में पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 वर्षों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्यभर में 1.25 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिसमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है। 3 अन्य लोगों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय नौसैनिक पोत शारदा ने श्रीलंका के कोलंबो की यात्रा पूरी कर ली है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग और आपसी संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। यात्रा के दौरान श्रीलंका की नौसेना के साथ कई पेशेवर प्रशिक्षण और खेल संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंटालिया में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज और किशोरी कुमकुम मोहन ने स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओ ये जिन और किम जे डेओ को हराया। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी भुज प्रस्तुत मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन से मोदी कहीं बने देश एक विचार साथ आगे बढ़ी रहा है मैक्रॉन कहीं भारत इन देशों में देश है। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल आज विश्व रक्तदाता दिवस निमित्त सबने नियमित रक्तदान थकी जरूरतमंद दर्दियों जीवन बचाव में मददरूप थवानो संकल्प लेवा अवरोध कर्यो। भुजमां हमीरसर तलाव खाते प्रभारी मंत्री कांतिलाल अमूठिया श्रमदान करी लोकोने स्वच्छतानो संदेश आप्यो। उच्च अने टेक्निकल शिक्षण राज्य मंत्री एकम छांगाए स्वच्छाग्रही बनावानी हाकल करता नागरिकोने प्लास्टिक मुक्त शहर बनावा संदेश आप्यो। हमीरसर तलाव खाते समय थी सीधी नूतन भारत में सफल भारत त्रण पॉइंट शून्य परिवर्तन दायकनी थीम हेठ आयोजित प्रदर्शनी ने खुली मुकवा।

parece de coronavirus. कार्यक्रम शहर में पूर्व कच्छ पुलिस विभाग द्वारा रविवार संजय और साउथ एंड रेडी आयोजन कर मिडला सर्वोदय ट्रस्ट संचालित केम पटेल आयुर्वेदन खाते मगज विविध रोगों कंपन बीमारी अंगे निःशुल्क निदान और जागृति शिविर आयोजन कर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया द्वारा

जिंदगी में कुछ कर गुजरने के लालसा इन भारतीय सेना के वीर जवानों में लहू की तरह बहती रहती है। हर सांस में उसकी सुरक्षा और सेवा की महक फैलती रहती है। तभी तो उनके साहस को कोई भी दुश्मन सेना हिला नहीं पाती। उनके इरादे अटल पर्वतों की तरह सरहद पर युद्ध के मैदानों में स्थिर अडिग रहते हैं। जब कदम बढ़ा लेते हैं आगे तो वे कभी पीछे नहीं लौटते। लौटते हैं तो बस उनके शरीर, जब वे शहीद हो जाते हैं। आत्मा तो भारत माँ के आंचल में सुख की नींद लेने लग जाती है। धन्य है ऐसे वीर।

ये तो शुरू होने से ठीक पहले उन्हें वाशिंगटन में नियुक्ति के लिए चुना गया था, लेकिन एक बेहतरीन अधिकारी के रूप में आपकी उत्कृष्ट पहचान बन चुकी थी। वे सिख रेजिमेंट के प्रथम बटालियन के गुड़गांव में कमान संभाले हुए थे। इसीलिए जैसे ही युद्ध शुरू हुआ आपको कश्मीर के इस मिशन के लिए चुन लिया गया और उन्हें वहाँ भेजा गया। 27 अक्टूबर 1947 को लेफ्टिनेंट कर्नल दिवान रंजीत राय को श्रीनगर के ऑफिस में एयरफील्ड की सुरक्षा के तहत दिल्ली से इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस युद्ध क्षेत्र में भेजा गया था। साथियों, लेफ्टिनेंट कर्नल दिवान रंजीत राय के नेतृत्व में एक सिख रेजिमेंट से कुछ सैनिकों को यहाँ लाया गया था। इस तरह बड़ी कुशलता और सूझबूझ के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल दिवान रंजीत राय अपनी छोटे पलटन के साथ तुरंत बारामूला की ओर बढ़े, जिससे उस जगह पर अपनी पकड़ बनाई जा सके। कैप्टन कमलजीत सिंह के अगुवाई में कंपनी बारामूला और डी कंपनी मेजर अर्पण सिंह के अगुवाई में श्रीनगर भेजी।

भाई है हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा कहानियां अदम्य साहस की कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की।

0: 失敗するだけ。
1: Dispense lagi, udah isi irade se gayat lagai ke ki kis pal akmal kiya jai. Sama bahut kam tha, lekin Lieutenant Colonel Devendra Chitrare apni jaan ki parwah na karte hue badi bahadri, adamya sahas aur pyaakam ka parichay dete hue dushmanon ka samna karne lage. दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई थी। दुश्मन भारी मशीन गनों और मोर्टारों द्वारा हमला कर रहे थे, लेकिन हमारी भारतीय सेना सिख रेजिमेंट के वीर योद्धा अधिक विचलित नहीं हुए थे, बल्कि उनके हौसले और भी बुलंद हो गए। आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी थी, अब अंजाम कुछ भी हो युद्ध का अंत होकर ही सांस लेना है। ऐसे मजबूत इरादों के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय और उनके साथी युद्ध भूमि पर दखल हुए थे। वे दुश्मन के हमले का महत्वपूर्ण जवाब दे रहे थे। धरती, आकाश और युद्ध भूमि का वो इलाका जहाँ ये गोलाबारी हो रही थी, गोली के शोर से गूंज रही थी और हुंकारे थे हमारे जाबाज राय बाकुरों की।

बदल दिखा दे। जिन्होंने गोलाबारी से दुश्मनों के हौसले पस्त हो चुके थे, उनको ये ज्ञात हो चुका था कि लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय और उनके सैनिकों को हटा नहीं पाएंगे। तब दुश्मनों ने खुद ही पीछे हटने में अपनी भलाई समझी और ये निर्णय लिया कि अब उन लोगों के आगे कोई बस नहीं चल सकता, लेकिन फिर भी वे बराबर गोलियों के बौछार करते जा रहे थे। लेकिन तब तक लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत राय को दुश्मनों की गोली लग चुकी थी। अपनी टीम की अगुवाई करते हुए 27 अक्टूबर सन 1947 को वे युद्ध भूमि में रेल गति को प्राप्त हो गए। फौजी साथियों, हालांकि नवंबर सन 1947 को बारामिया से भारतीय सेना को चिन्हों को वहां से बेदखल करवाने में 2 सप्ताह का समय लग गया था, लेकिन विजय हासिल हुई। इस विजय में भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट में अपना एक वीर योद्धा हमेशा के लिए खो गया था, लेकिन उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई, वो एक क्षण गाथा लिख गए। आज हम सभी के लिए प्रेरणा की वो मिसाल बन गए कि यदि जिगर में हिम्मत और हौसला अपने देश के प्रति अपने

प्रथम सफेद सुरक्षित रह सकेंगे। वो कहते हैं कि मरने के बाद भी जिनके नाम में जान है ऐसे जाबाज सैनिक हमारे भारत की शान है। देश के उन वीर जवानों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और सलाम करते हैं। भारत सरकार द्वारा देश का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र सन 1947 को लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान गांधी प्राय को मरने पर उनके उत्कृष्ट निर्णय लेने के और लड़ने की भावना और सर्वोच्च बलिदान के लिए प्रदान किया गया। उन्हें

यही वह भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं इंद्रधनुष में सांस और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे कार्यरत यानी शहनाई पर फिल्मी धुने। आज की फिल्म है प्रोफेसर और दिल एक मंदिर।

0: आकाशवाणी समाचार सुनील परमार वाचे से सर्वप्रथम मुख्य समाचार। फ्रांस में नाइस में भारत यूनिवर्स कार्यक्रम उद्घाटन करता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं नवीनता टेक्नोलॉजी भारत में युवाओं की आकांक्षाओं देश विकास में आग धपाई रही है। फ्रांस में राष्ट्रप्रमुख मैक्रों भारत यूनिवर्स में भारत में नवीनतम माड़खाने फ्रांस में टेक्नोलॉजिकल विस्तरण वच्चे सेतु बनो। आयुष मंत्रालय आज यूट्यूब पर योजना लाइव योग सत्र द्वारा गिनीस वर्ल्ड रेकॉर्ड बनाव्यो। अमेरिका ना राष्ट्रप्रमुख डोनाल्ड ट्रम्पे ईरान साथ संघर्ष में अंत लावा आज एक करार पर हस्ताक्षर थवानी संभावना व्यक्त करी। तुर्की में रमेली तीरंदाजी स्पर्धा में भारत में धीरज बंबदेवरा और किशोर कुमकुम मोहदे सुवर्ण चंद्रक जीत्यो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस में राष्ट्रप्रमुख इमेन्युअल मैक्रों फ्रांस में नाइस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वाटाघाटों की। बने पक्षों मुख्यत्व संरक्षण टेक्नोलॉजी और व्यापार सहित तमी खास वैश्विक व्यूहात्मक भागीदारी विस्तरण पर चर्चा की। बने नेताओं वॉक एंड टॉक सत्र दरमियान चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और श्री मैक्रों नाइस में भारत यूनिवर्स कार्यक्रम संयुक्त रूप से उद्घाटन कर। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष दरमियान आयोजित आ कार्यक्रम में अन्य देशों में टोचना नवाचार स्टार्टअप्स और अग्रणी रोकाणकारों उपस्थित रहा। एडवांस क्वांटम कम्प्यूटिंग सेमीकंडक्टर्स कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अवकाश स्वच्छ ऊर्जा और जैव प्रौद्योगिकी सहित तेर मुख्य क्षेत्रों में नवाचार प्रदर्शित कर। आ प्रसंगे श्री मोदी बने देशों मजबूत संबंध पर प्रकाश पाड़ो।
1: एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, अलग अलग देशों के बीच

दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड था उसे भी काट दिया है। 45 मिनट का ये जो योग प्रोटोकॉल था वो सभी ने एक साथ आकर यहाँ पर किया कि मुझे बहुत खुशी है।

बाकी दो एकड़ की जिम्मेदारी दूंगा। अरे मैं खुद भी जीत जाऊंगा, लेकिन बच्चे

0: सुबह पूरे कर लेते सुबह, अरे सुबह का तेल गया भवानी जी, अब तो बात इज्जत की है इज्जत की।
1: देखो बाबू, छोटी सी बात को इज्जत का सवाल बना लेना जायज है।
0: अरे सब जायज है भवानी जी, प्यार और लड़ाई में कहते सब कुछ जायज है, बस तमाशा घर देखते जाओ।
1: तो मैं देख ही रहा हूँ बाबू, तमाशा ही देख रहा
0: हूँ। ओहो भवानी जी, अब मैं तो यहाँ बैठा ही रह गया। ओहो, अभी तो बहुत से लोगों को निर्णय देने
1: अच्छा
0: जरूर है।

Yeah,

Oh, good job, little chick. Little chick, little chick.

Thank you.

ज्यादा बड़ा पैसे हो गया, तुम तो खुद ही अपना बड़ा करना पड़ता है। अपना बड़ा चाहते तो पूरे गाँव की दावत का बोझ ढोने से पहले कर्ज का बोझ उतारते साथ में खुशी तो मन का एक भाग है भैया, जिसमें जीवन सार्थक है। एक भूल तुमने और भी की है जिस पर तुम अभी तक अपने सिख से आ रहे हो, वो छठ पड़ी जी रूप सिंह पर किया तुम्हारा मुकदमा, क्या गलती उसी की, गलती उसी की, लेकिन उसमें नुकसान तो तुम्हारा है भाई, नुकसान तुम्हारा गलती चाहे जिसकी। अभी तक तुम 4 एकड़ जमीन उसी चक्कर में खो चुके हो, और मैं समझता हूँ कि फैसला होने तक बाकी की जमीन भी उसी में चली जाऊंगी। कोर्ट कचहरी में कभी किसी का भला नहीं होता है, मगरू कभी किसी का भला नहीं होता कोर्ट कचहरी में, जीतने वाला भी रोता है हारने वाला भी रोता है। तो मेरा ना करो रूप सिंह को मैं समझाऊंगा। ठीक ठीक है, ये कैसे कर दीजिए।

चित्रमय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं के गाने से। इसे लिखा है साहिद काजरी ने, संगीत प्रीतम का है, फिल्म का नाम है तुम मिली।

0: अभी आपने श्री राम और शिल्पा राव की आवाजों में ये जवानी है दीवानी फिल्म का गाना सुना। इसे लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत प्रीतम का था।
1: झंझे बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंझट हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: बीमारी के गंभीर के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल पूर्ण घूम रहे हैं, वहाँ बारिश नहीं रह गया है। वो जो भूटिंग है, उस भूटिंग को बीमारी के गंभीर में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि उन्होंने उस पर मेहनत की।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पंडित रोनु मजुमदार, संगीत सविता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ देवत भारती पर।
0: चित्रों कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे ब्रेक के बाद।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में हमारी अधूरी कहानी फिल्म का ये गाना। गीत रश्मि विराग ने लिखा है, संगीत जीत कामवाली का है।

0: इनके साथ ही चित्रमुख कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खासतौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत के नोवेक्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 43 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिसरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के दौरे पर विदेश मामलों के मंत्री जियान नोएल बारट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खासतौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल है। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
2: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कनेक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहलें शुरू की और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
1: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार का वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
3: A country with 1.4 billion inhabitants.
4: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करते हैं। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
3: Frontier Models is spearheading global innovation.
1: श्री नायडू ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
5: The world seeks trusted and reliable partners.
6: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
5: And a scale that few can match.
1: विदेश मंत्री ने इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
7: जो भारत का परिप्रेक्ष्य वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं और इसके चलते जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पर बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूंगा एक तरह से जो अंडरलाइन थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुरुजोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं और जिन नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों

0: कितने घंटे एक है?
1: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
0: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और

0: चार वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। एज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा लालचीरस तालुका में वासवाड़ा पंडरपुर मार्ग पर तलवंडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे। इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान से भारतीय दूतावास ने बताया कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें एनटीए की वेबसाइट NEET.NTA.NIC.IN से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनिता कौशिक और

0: किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक बुला कांग्रेस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारत में चालन रोके, सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 100 का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
1: गुड इवनिंग। This is Akashvani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron hold delegation-level talks at historic Villa Carolaz at Nice. Focus on expanding special global strategic partnership between two countries across key sectors. Both leaders jointly inaugurate Bharat Innovates event at Palladio Expositions. India's space economy poised to grow from $9 billion to $45 billion in the next decade. In Maharashtra, 8 pilgrims die as vehicle falls in Berlin, Solapur. All 14 Indian crew members rescued from a vessel off Oman coast after Indian failure. And in cricket, India set a target of 171 runs for Pakistan in the group stage match of ICC Women's T20 World Cup in Birmingham. Now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron held delegation-level talks at historic Villa Carolaz at Nice in France. The discussions between two sides focused on expanding the special global strategic partnership between two countries across key sectors including defense, technology and trade. Prime Minister Modi was accompanied by the National Security Advisor Ajit Doval, External Affairs Minister Jaishankar, Foreign Secretary Vikram Misri and senior officials. President Macron was accompanied by French Minister for Europe and Foreign Affairs, Jean-Louis Borat, and other senior officials. The two leaders also interacted during a walk-and-talk session at Villa Carolaz. Earlier, Prime Minister Modi and French President Macron jointly inaugurated Bharat Innovates event at Palladio Expositions at Nice in France today. The landmark initiative showcases India's rapidly expanding innovation and startup ecosystem. The flagship event being held under the India France Era of Innovation brings together over 120 Indian startups and leading investors, technology leaders, and premier educational institutions from across the globe. It features innovations across 13 key sectors, including advanced computing, semiconductors, artificial intelligence, clean energy, and others. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi highlighted India's startup revolution by saying that the country's youth are developing solutions for global challenges in a number of areas.
2: एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: Highlighting the strength of India first side, Mr. Modi said, while many nations engage in trade and strategic cooperation, only a few relationships are guided by a shared vision as well as common interests.
2: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है।
1: Addressing the gathering, French President Macron praised India's emergence as a global innovation powerhouse and said the question today is no longer whether India is innovating, but who will innovate with India.
3: A country with 1.4 billion inhabitants, a country with its

बात सुनते हैं। लता मंगेशकर और मनोहर उदास की आवाज में अभिमान फिल्म का गाना गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है, संगीत से सवारा है एस डी बर्मन ने।

0: ये तो सब है।
1: सरकार गिरी गई इसी बेबी सहित

साहब की रात फिल्म की एक कमाली सुनकर याद आ जाता है वो जमाना जब फिल्में तो ब्लैक एंड व्हाइट होती थी मगर उनकी कहानियां जीवन के जज्बाती रंगों से भरपूर। और याद आता है वो कलाकार जो अपने सुदर्शन व्यक्तित्व और सीधे सरल

सन 1920 के जून महीने की 14 तारीख को मेरठ में जन्म हुआ भारतभूषण का। पिता राय बहादुर मोतीलाल सरकारी वकील थे। भारतभूषण बस 2 ही वर्ष के थे जब उनकी माता का देहावसान हुआ। मां के गुजरने के बाद बड़े भाई आर चंद्रा के साथ भारतभूषण

शिकायत भेजने के पश्चात भारत भूषण पिता की मर्जी के खिलाफ एक्टिंग में करियर बनाने के लिए पहले कोलकाता और बाद में मुंबई आकर बस गए। किरदार शर्मा निर्देशित 1941 की फिल्म चित्रलेखा में भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर मिला। भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर तो मिला।

संघर्ष में जीवन का एक दशक बीत गया और 1952 में भारत भूषण को फिल्म मिली बैजू बाजा। इस फिल्म ने उन्हें आनंद फिल्म सुप्रसिद्ध फिल्म सितारों की श्रेणी में लाकर रख दिया। इस फिल्म के संगीतकार निषाद, नायिका मीना कुमारी और पार्श्व गायक मोहम्मद रफी को जितनी तारीफें मिली उतनी ही तारीफ और शहरत भारत भूषण को भी नसीब हुई। मानो प्रतिभा की गंगा और किस्मत के जमुना का मिलन होना था।

चलता के बाद सिलसिला चलता रहा। एक के बाद एक फिल्में आती गई। भारत भूषण अपने अभिनय से दरबार सजाते गए और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। 1952 से 1954 तक रिलीज हुई ये फिल्में हैं आनंद भट्ट, माँ, मिर्जा गालिब, शबाब और श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु इस फिल्म के लिए भारत भूषण को सर्वोत्कृष्ट अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किया गया। उनके समकालीन अभिनेता और निर्माता चंद्रशेखर कहा करते थे, हिंदी फिल्मों में यदि पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र

भूषण केवल अभिनेता नहीं थे, उन्हें किताबों का बहुत शौक था। विभिन्न विषयों की किताबें वो पढ़ते रहते थे और शायद यही वजह थी कि वो बहुत अच्छे लेखक भी थे। बरसात की रात, नई उम्र की नई फसल, वसंत बहार और दूध का चैन आदि फिल्मों की कहानियाँ उन्हीं की लिखी हुई थी।

में भारत भूषण पूरे उत्साह और उमंग के साथ सक्रिय थे। 1970, 1980 और 90 के दशक की ये फिल्में थी जय संतोषिना, मीरा, उमराव जैन, हीरो, रहा गुजर, काला धंधा, जोड़े योग,

स्टेशन था। अभिनेता भारत भूषण पर केंद्रित ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत जयंत पात्रिका को।

소리를 이렇게 쓰다가 하여 가볍게 봤더니 I'm not going to be able to do it.

से फूलों की तरह और तुम्हारी उलझनों को अपना लिया था। हमने माथे की सिहतों और होंठों की मुस्कानों को अपना बनाया था। उसके बाद से ये साझेदारी है

ही पुस्तक श्रोताओं को शुरू के अनौपिक संसार में ले जाती है। पंडित रवि मजुमदार संगीत सरकार नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 3 जुलाई से सुबह और शाम 6:55 सिर्फ विविध भारती पर।

खुशबू आपका दोस्त यूनुस है। सिर्फ मनोरंजन नहीं है, कोई भी स्मृति भी है, कोई भी नॉस्टैल्जिया।

0: के प्रमुख प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन तक के इस आयोजन में भारतीय डेट टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तन कार्यों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रेवोल्यूशन हो रहा है। इस रेवोल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्र ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ते निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ऑपरेशन ओशन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा वलचेर स्थानिका में वसमार्ड पंडरपुर मार्ग पर तंगनवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। यह परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। इसराइल में लेबनान की राजधानी पर ईरान समर्थित समूह हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को निशाने बनाकर हमला किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्लाह के हमलों के जवाब में किए गए थे। बीते दिनों

0: आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार साक्षात्कार कर रहे हैं गौरव श्रीवास्तव।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ गौरव श्रीवास्तव। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब भी बात होती है तो हमने देखा है कि बीते एक दशक में या यूं कहें कि जब से मोदी सरकार आई है बीते 12 वर्षों में लगातार इसमें प्रगति देखने को मिल रही है। और ये प्रगति इसलिए भी है क्योंकि लगातार जो अलग अलग तरीके से इसमें इनिशिएटिव्स लिए गए और लगातार जो इस पर फोकस किया गया उससे आज जो क्रांति आई है वो बदलते दौर की एक नई तस्वीर पेश कर रही है। इन तमाम अहम पहलुओं पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या इसके अलावा स्पेस सेक्टर हो, इसके अलावा अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं या क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये सब कुछ इतना बड़ा हुआ है बीते 12 वर्षों में, अभी हाल में कहां पे है और किस तरह से जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है वो क्या कुछ कहता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री। सर बहुत स्वागत आपका। पहला सवाल सर यही है, 12 साल और उसके बाद जो लगातार इनिशिएटिव्स लिए गए बहुत बड़ी गति मिलती हुई नजर आई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, कैसे इस सफर को देखते हैं और क्या बड़ा होने वाला है जिससे भविष्य और ज्यादा बेहतर भारत का नजर आता है?
2: जैसे कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जहां तक विज्ञान को लेकर के अगर हम बात करें या साइंस टेक्नोलॉजी की, तो एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ
1: जी।
2: उसका प्रमुख बिंदु एक तो ये था कि इसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता हासिल हुई। पहले साइंस टेक्नोलॉजी संबंधित विषयों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं मिलती थी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की तरफ से, तो प्रधानमंत्री जी स्वयं इसमें रुचि लेने लगे। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर को इग्नोर किया गया ये समझते हुए कि अगर आज की दुनिया में हमें इससे आगे बढ़ना है तो हम साइलोज में नहीं चल सकते। और तीसरा, विज्ञान में जो है ईज ऑफ रिसर्च वो तो लाजिम अनिवार्य है, उसके साथ साथ अंततः उसका लक्ष्य ईज ऑफ लिविंग फॉर अ सिटीजन, तो उसको सिटीजन सेंट्रिक भी बनाया गया। और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव गत 12 वर्षों में ऐसे रहे हैं जिनका सीधा सीधा ताल्लुक नागरिक के साथ है या नागरिक के जीवन के साथ है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया जो पहले विज्ञान संबंधी समाचारों को या गतिविधियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं देता था, उसमें भी जिस तरह से हमारा स्पेस की अचीवमेंट्स हुई, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि स्पेस इज गिवन अस स्पेस इन मेन स्ट्रीम मीडिया नारायण के माध्यम से। और ओवर में जो लैंडर आया अभी हाल ही में 3-4 या 2-3 दिन का कैंप था मुंबई में
1: जी,
2: तो हमारे मेवा लगभग 30-40-50 लाख का लैंडर तेल फरोख्त करके आए हैं,
1: तो
2: एक नया एवेन्यू रोजगार का आ गया। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं क्वांटम की, तो मीडिया का भी इससे ताल्लुक है
1: जी,
2: डिफेंस का भी ताल्लुक है और इसलिए सबको रुचि भी आई। हमने अपने लिए 8 साल का टारगेट रखा था, उसमें से आधा हिस्सा जो हमें 4 साल तक तो थी कि हम पूरा कर लेंगे, 3 साल में मुकम्मल हो गया। तो अनेकों ऐसा स्काई कास जो इंस्टॉल किया गया है जिसके माध्यम से जो कोहरे का मौसम होता है तो बहुत दिक्कत आती है फ्लाइट्स में
1: जी,
2: पायलट को भी दिक्कत आती है, यात्रियों को भी असुविधा होती है, तो उसमें बहुत सारी बेहतरी हो कि इस प्रकार से फॉग की प्रोडक्शन और ज्यादा एक्यूरेट प्रिसाइज हो। तो ये चूंकि नागरिकों के साथ संबंधित ये विषय है, इसी प्रकार चाहे आप हमारे गवर्नेंस का ले लीजिए, जो हमारा सिटी ग्राम मॉडल है जिसको हमने AI चैटबॉट के साथ जोड़ दिया, अभी 2 ही दिन पहले की बात है, तो उससे भी आम नागरिक जो है एक जमाने में 2014 से पहले कुल मिला करके हमारे यहाँ सरकार में 2 लाख शिकायतें आती थी पूरे हिंदुस्तान में साल भर में, आज वही संख्या बढ़कर के 25-30 लाख हो गई, क्योंकि लोगों की रुचि बढ़ी, क्योंकि वी आर प्रॉम्प्ट, वी आर रिस्पॉन्सिव, वी आर फॉलोइंग टाइमलाइन। हमारे 95-97% जहां पुराने जमाने में 2-2.5 महीने लगते थे अगर जवाब आए, जवाब के बाद आता ही नहीं था, आज हमने ये सुनिश्चित किया कि हर ग्रीवेंस का जवाब भी आएगा, AI ड्रिवन भी होगा और कोई ह्यूमन बात भी करेगा उससे, और उसकी टाइमलाइन घटा करके 12-13 दिन कर देगा और बहुत जल्दी एक हफ्ता हो जाएगी।
1: बिल्कुल सर, इसके अलावा भी हमने देखा कि जो फास्ट ब्रीडर यात्रा जो भी हमने हाल ही में देखा कि बहुत बड़ा कीर्तिमान और उपलब्धि हासिल करते हुए नजर आया, कितना बड़ा चैलेंज था क्योंकि होमी बाबा ने इसकी नींव बहुत

0: शुभ होती। बड़ा गंभीरता से गहराई से सोचे तो समझ में आएगा कि हमी बाबा कितने दूर अंदेश व्यक्ति थे हिंदुस्तान की परिस्थितियों को समझते हुए, हमारे साधनों की लिमिटेशंस को समझते हुए उन्होंने हमें एक थ्री स्टेज प्रोग्राम दिया। जो तीन स्टेजेस उन्होंने दी थी उसमें धीरे धीरे प्रगति हो उस तरह से कैसे उन्होंने तय किया। पहले स्टेज में हम प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे। हैवी वाटर होता है थोड़ा सा अलग किस्म, जैसे आम पानी को आप H2O कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये होता है D2O नाइट्रस ऑक्साइड। लेकिन उसमें लाभ ये रहता है कि उसमें आम यूरेनियम इस्तेमाल होता है जो आपको पहाड़ों से कोस्टल एरिया से मिलता है, उसमें कुछ एनरिचमेंट नहीं करनी चाहिए तो उसको इस्तेमाल से वो यूरेनियम 2-3 डे
1: उसकी मात्रा भी सर कम है,
0: मात्रा भी कम है और उसका जो स्पेंट फ्यूल निकलता है प्लूटोनियम। तो हमें बाबा का ये तस्वुर था, ये कल्पना थी कि जब हम उसमें थोड़ी सी भारत हासिल कर लेंगे तो उस प्लूटोनियम जो वहाँ का स्पेंट फ्यूल निकलेगा उसी को हम दूसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे। ऐसे उसको यूरेनियम 239 के साथ जोड़ के जो थोड़ा सा एनरिच्ड है, तो एनरिच्ड यूरेनियम को जब हम प्लूटोनियम के साथ जोड़ेंगे जिसे विज्ञान की भाषा में मिक्सड ऑक्साइड फ्यूल भी कहा जाता है, तो उससे एक रिएक्टर के लिए एनर्जी भी ईजाद होगी और साथ ही साथ उसी रिएक्टर के बैग में हम थोरियम रख देंगे कि वो हिंदुस्तान में जैसे आपने कहा कि सबसे अधिक स्टोर दुनिया का हिंदुस्तान का ऑलमोस्ट 25% और मोनोसाइट हमारा मिनरल उसका एक हिस्सा है। तो उस थोरियम को जब हम बैग में रखेंगे तो जब वो रिएक्टर का दोनों यूरेनियम और प्लूटोनियम ऊपर काम करेंगे तो प्लूटोनियम से जो उसमें से कुछ एक न्यूट्रॉन्स निकलेंगे पॉजिटिव न्यूट्रॉन, उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा सीक्वेंस और इसको एक अलग किस्म के फ्यूल में कन्वर्ट करेगा जो होगा यूरेनियम 233 जो एनरिच्ड नहीं है लेकिन है वो इंजन ही फ्यूल ही। और इस तरह से थोरियम से प्राप्त हुआ, सोडियम से पैदा किया गया यूरेनियम हमें मिलेगा जो हम तीसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे। जब हम स्टेज में पहुंच जाएंगे तो दूसरों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी क्योंकि ये थोरियम तो हमारे घर में मौजूद है। बड़ी तो मात्रा से किया था और ये जो आपने कहा अप्रैल मास में हम दूसरी स्टेज पर पहुंच गए जहाँ प्रोटोटाइप फास्ट बीड रिएक्टर याद किया गया और इसकी धूम सारी दुनिया में है। साथ ही साथ चूंकि शांति एक्ट भी आया वो भी प्रधानमंत्री जी के ही हस्तक्षेप से हुआ, बिकॉज पोलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए तुरंत बात होती है कि न्यूक्लियर सेक्टर को खोल देगा प्राइवेट प्लेयर्स के लिए।
1: प्राइवेट सेक्टर के लिए जब खोला गया न्यूक्लियर का सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए जब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और खोला गया, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मानते हैं लोगों के लिए जिनके बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जो इसमें कुछ करना चाहते हैं?
0: बिल्कुल, ये आपने अच्छा किया पूछा। पहली बात तो ये है कि एक बहुत क्रांतिकारी निर्णय था, बहुत कम देश ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने अपना न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर के लिए खोला है। तो इसके लिए भी जैसे मैंने कहा इट रिक्वायर्स पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल करेज, पॉलिटिकल कन्विक्शन, वो मोदी जी के कार्य संभव हुआ। अब जब खुल गया तो कई लोग जो शायद सिनेसिज्म की वजह से कहते हैं या आलोचना की दृष्टि से कहते हैं कि साहब अब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज के लिए खोला गया, ऐसा नहीं है। बल्कि जो हमने शांति एक्ट लगाया है उसमें अलग अलग स्लैब्स रखी है, मतलब 1000 मेगावाट का लगाना चाहिए तो अपनी स्लैब कम है, बड़ा लगाना चाहिए ज्यादा 100 मेगावाट का है। अब तो स्मॉल रिएक्टर्स है, स्मॉल मॉडल रिएक्टर्स भी है, दूसरे स्मॉल रिएक्टर्स है तो 200 मेगावाट से भी कम कैपेसिटी के होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा इको सिस्टम बनाया गया है पिछले 12 साल में जिसको आप कंबाइन करके कुछ एक लोग अगर युवा मिल जाए एक स्टार्टअप का अंदर मेच्योर एंटरप्रेन्योरशिप, तो जैसे बड़ा RDI फंड में है 50% सरकार की ओर से मिलता है बहुत कम इंटरेस्ट पर, तो आप एक छोटा रिएक्टर भी लगा सकते हैं। यानी दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि शांति एक्ट के आने के बाद और प्राइवेट सेक्टर खुलने के बाद बड़े हाउसेज तो अलग बात है लेकिन जो छोटे छोटे ग्रुप्स है स्टार्टअप्स के एंटरप्रेन्योर्स के उनके लिए भी लाइवलीहुड रोजगार का एक नया साधन और बड़ा लुक्रेटिव साधन होगा और आने वाले जमाने में इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये युग है, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का होना लाजिम रहेगा ही रहेगा।
1: बिल्कुल सर, एक सवाल और एक बड़ी उपलब्धि जो लगातार हम देख रहे हैं कि आपके नेतृत्व में भी आगे बढ़ती हुई नजर आई है क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर उसके नेटवर्क को लेकर। कहा तो 8 साल का एक रोड मैप तैयार किया गया था 2000 किलोमीटर का, 1000 किलोमीटर 2 साल के अंदर में पूरा हो गया, क्या चैलेंजेस इसके पीछे और कैसी उपलब्धि इतनी जल्दी हासिल की गई?
0: क्वांटम मिशन हमने लॉन्च किया था सन 2023 में और 8 साल के लिए एक प्लान बनाया था। उस समय मैंने ये कहा था कि क्वांटम मिशन की लॉन्चिंग मात्र फिजिकल लॉन्चिंग है, इसमें एक बड़ा सिंबॉलिक मैसेज भी गया है, वो ये कि हम उन चंद चार पांच देशों में है जिनका क्वांटम मिशन है। यानी वो जमाना जाता रहा, दुनिया भर में ये पैगाम गया कि वो जमाना जाता रहा जो कोई इनिशिएटिव को और देश लेता था और फिर 10-15 वर्ष के बाद हम उसका अनुसरण करते, चाहे वो टेलीविजन था, चाहे वो इंटरनेट था, चाहे वो मोबाइल थे, जो मेरे ख्याल 1950 के दशक में 1970 के दशक में पहुंचे, और बहुत बड़ा भर चल रहा है। तो क्वांटम में

0: बात है कम्युनिकेशन, क्योंकि एनक्रिप्ट इज क्योर। मैं कभी भी आपके व्हाट्सएप एनक्रिप्ट है, लेकिन वहां ऐसा होगा कि वो संभव ही नहीं होगा उसको एनक्रिप्ट करना। डिफेंस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, मीडिया की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। उसमें हमने टारगेट रखा था कि 2000 किलोमीटर तक क्षमता विकसित करेंगे 8 वर्षों में क्वांटम कम्युनिकेशन करने की, लेकिन उसमें से आधी जो 1000 हमने 2 या 3 सालों में कर ली। यानी हम 8 साल का टारगेट हो सकता है 8 साल से पहले ही करते और हम उससे आगे बढ़ जाए।
1: बिल्कुल सर, एक सवाल और आता है कि जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं, क्योंकि हमने तमाम क्षेत्रों को देखा कि किस तरह से उनमें प्रगति नजर आई, बायोटेक्नोलॉजी में जब हम उम्मीद प्रोग्राम की बात करते हैं, किस तरह से ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा किफायती होगा, उनको सुविधा पहुंचाता हुआ नजर आएगा जो जेनेटिक डिजीजेस से कहीं ना कहीं दो चार हो रहे हैं और कई बार टेस्ट भी कराते हैं लेकिन पता नहीं चलता, क्या है सर ये उम्मीद प्रोग्राम और कैसे लोगों को फायदा है?
0: ये बात करने से पहले मैं ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि ये इसलिए संभव हुआ कि वहां पर भी अभी 2-3 साल पहले हमने Bio-E3 पॉलिसी ली, उसमें भी हमारी पहले बहुत चंदी देशों में जिनकी एक डेडिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी है Bio-E3, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरमेंट, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयमेंट। और वो भी कभी संभव हुआ जब प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री जी की आज रखी गई तो उन्होंने अपने बाकी साथियों को भी ये समझाया कि आज शायद इसका महत्व बड़ा समझ आए, लेकिन कल हम किसी देश से पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी दुनिया भर में अर्थशास्त्रियों को भी मन में कि आने वाली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी, जेनेटिक ड्रिवन होगी, रिसाइक्लिंग होगा, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का होगा, यानी इकोनॉमी का शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से हट करके सर्कुलर की तरफ चला जाएगा, जेनेटिक्स की जाएगा। और उसमें भी हमने पहल कर लिए, और हमारा हिंदुस्तान ऐसा है कि यहाँ पर जीन्स को लेकर बड़ी डाइवर्सिटी है, हमने उसमें भी सीक्वेंसिंग 10,000 देशवासियों की खरीदने में अभी तक सफल हो चुके हैं और इनिशियल टारगेट है अबाउट 1 मिलियन। इसी प्रकार रेयर डिजीजेस, वो जेनेटिक डिजीजेस जो पैदाइश से होती है, कभी कभी उनके सिम्टम्स हो सकता है पैदाइश के समय या जन्म के समय जाहिर थोड़ा आगे चल करके हो, क्योंकि इन बीमारियों की संख्या बहुत कम रहती है, बहुत कम, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया है, चाहे वो नीम डिजीज है इस तरह के, इसलिए इसको प्राथमिकता भी कम मिलती थी, इसलिए इसके डायग्नोसिस की सुविधाएं भी दुर्लभ थी, इसलिए इसकी दवाई बहुत महंगी थी। लेकिन कोई छूट ना जाए कोई भी नागरिक हमारे शोध से, हमारी सेवाओं से, तो इसलिए उम्मीद का कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत लगभग अभी भी 3 लाख ऐसे लोग हैं जिनको इसका लाभ पहुंचा है। और उसमें हम अलग अलग चरणों में उसमें जो रेयर जेनेटिक डिजीज है उनमें किस तरह से सहयोग दिया जा सके, डायग्नोसिस कैसा हो, अर्ली डिटेक्शन हो, उसके बाद टेस्ट की क्या फैसिलिटी रहे, औषधियों की क्या रहे, उसको लेकर के। और इसी तरह से हमने बायोटेक्नोलॉजी का अगर आप देखें तो Bio-E3 पॉलिसी के ही तहत हिंदुस्तान का सबसे पहला एंटीबायोटिक भी हमने याद किया है। अभी तक जितने एंटीबायोटिक है, जो पहला एंटीबायोटिक आया था सन 1948 के लगभग पेंसिलिन, उस समय पाउडर का था, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसका पाउडर थोड़ा इस्तेमाल किया गया था, उस पर तो वहां से पता चला कि सारी इन्फेक्शन के लिए बंद रहता है, उसके बाद इसकी इंजेक्शन बनी बाद में टेबल बने, तो उसको इस समय क्वीन ऑफ ड्रग्स कहा जाता था। लेकिन तब से लेकर के जितने भी सक्सेसिव जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स हुई है, चाहे वो पेंसिलिन के बाद क्लोरोफेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, वो सारी बाहर से साल्ट हो गई, पहली बार हमने यहाँ ट्रायल किया, यहाँ साल्ट ट्रायल किया और प्राइवेट पार्टनर के साथ उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं।
1: सर अब बात करेंगे स्पेस की, क्योंकि स्पेस में बहुत सारा काम हुआ है, गगनयान मिशन पर सबसे ज्यादा नजर है, क्या तैयारियां उसको लेकर, और बीते दिनों में जो हमने देखा चाहे चंद्रयान मिशन हो या इसके अलावा अलग अलग जो मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं, उसमें कितनी प्रगति मिलती हुई नजर आ रही है जो गगनयान मिशन को बहुत सक्सेसफुल
0: बनाया है? स्पेस सेक्टर में सबसे पहला क्रांतिकारी मोड जैसे एपिडेमिक को लेकर के आपने शांति की बात की, वो 5 बरस पहले, जबकि जैसे मीडिया ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अनलॉक्ड स्पेस सेक्टर, पहली बार स्पेस को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि विज्ञान, शोध, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कमर्शियलाइजेशन तभी संभव है कि आप प्राइवेट सेक्टर को पहले दिन से ही साथ लेके।
1: सर ये इससे भी कनेक्टेड है जो प्राइवेट रॉकेट्स भी लोग जो
0: देखिए, आज से 5 साल पहले हमारा स्पेस इकोनॉमी हिंदुस्तान की तो बहुत ज्यादा उल्लेखनीय नहीं थी, आज हमारी स्पेस इकोनॉमी लगभग $2 बिलियन US डॉलर और इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है कि आंकलन ये लगाए जाते हैं, हमारी जो प्रोजेक्शन इंडिकेट करती है कि हमारे 5 सालों में 5-6 गुना बढ़ करके $40-45 बिलियन हो जाएंगे, जिसका अर्थ यह होगा कि स्पेस इकोनॉमी विल बी एन इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी एज वी मूव टूवर्ड्स 2047। और हमारा स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप सिंगल डिजिट हुआ करते थे, आप 400 से बढ़ गए और एक हाल ही में शुरू हुआ स्टार्टअप हमारा यूनिकॉर्न भी हो गया पिछले कुछ दिन पहले। अब प्राइवेट सेक्टर में रॉकेट्स भी बनाए जा रहे हैं, लॉन्चिंग्स भी हो रही है, अब इसलिए संभव हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर का सहयोग पब्लिक सेक्टर के द्वारा हो रहा है और दोनों एक समन्वय बना करके कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हिंदुस्तान की यह भी खासियत है, हमारे रॉकेट्स तो जा ही रहे हैं, रॉकेट्स एक खबर हमारी बड़ी ज्यादा बनती है जैसे चंद्रयान को लेकर के बड़ी फैसिनेटिंग फ्लाइट, लेकिन हिंदुस्तान की यह विशेषता है कि हमने स्पेस सेक्टर में जितना स्पेस मिशन के लिए इस्तेमाल किया है उससे अधिक नागरिक जीवन में सुविधा लाने के लिए ईज ऑफ लिविंग। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के सुझाव पर गति शक्ति शुरू किया, गति शक्ति का ग्लोबल मॉडल जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में काम आता है, उसकी मॉनिटरिंग में, उसकी टाइमलाइंस को निर्धारित तरीके से संभालने में, उसकी जो बाधाएं है, तो गति शक्ति का स्टोरी हमारा लैंड फॉर्म्स को लेकर के जो कार्यक्रम है ड्रोन्स और स्पेस को लेकर के, उसमें भी हमारा स्पेस का ही काम हो रहा है, हमारे मीडिया और टेलीविजन चैनल्स तो है ही है। तो कहने का अर्थ है कि हमारा स्पेस सेक्टर इज वर्चुअली एवरी हाउस होल्ड, एवरी इंडियन हाउस होल्ड टूडे। और वॉरफेयर आपने देख ही लिया ऑपरेशन से दूर में, उसमें दो ही विभाग थे मुख्य तौर पर, एक स्पेस सेक्टर और दूसरा न्यूक्लियर सेक्टर। तो ये सारा वॉरफेयर उससे हमारी क्षमता और आज ये स्थिति है कि हमारे ब्रह्मोस मिसाइल्स हम न केवल इंडिजिनस बना रहे हैं बल्कि इंडिजिनस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा डिफेंस सेक्टर अधिकतर इम्पोर्ट्स पर डिपेंड करता है। 2014 से पहले 2025 में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1,00,000 करोड़ से अधिक है और हमारा एक्सपोर्ट हुआ है लगभग 23,000 करोड़ दूसरे देशों के। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम में जा रही है, इंडोनेशिया जा रही है और बहुत सारे हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स यूरोपियन देशों में, फ्रांस इत्यादि में जा रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे स्टार्टअप्स में, हम जब शुरू हुए तो 350-400 थे, आज हम तीसरे दर्जे पहुंच गए 2,26,000 से अधिक और उनके माध्यम से जो जॉब्स जनरेट हुए उनकी संख्या लगभग 24,00,000 है। इसी प्रकार हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम नंबर ऑलमोस्ट 98 थे, 38 आ गए। पेटेंट्स में हम नंबर 6 है दुनिया में, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उसमें से 55% ऐसे हैं जो इजरायली इंडियन है, बाहर जाके शोध करते हैं। ये बच्चे वो है जिन्होंने यही शोध किया, यही पले बले और यहीं से उन्होंने पेटेंट फाइल किया। और यही कारण है कि आज विश्व हमें निगाह उठाकर देखता है, बड़ी तवक्को के साथ देखता है। अब वो नहीं रहा कि वी आर नॉट देयर टू बी लेड, द वर्ल्ड लुक्स अप टू अस टू लीड। ये एक बहुत बड़ा हमारा भी माइंड सेट बदला और दुनिया का नजरिया बदला हमारे प्रति।
1: भारत टेक्नोलॉजी क्योंकि क्रिएटर बन रहा है, ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप कितना बड़ा योगदान मानते हैं और तमाम क्षेत्र, चाहे हम क्वांटम की बात करें वो भी और इसके अलावा रक्षा की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस तरह से जो नई गति है वो देते हुए नजर आ रही है अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें।
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक ऐसा टूल है
1: जी
0: जो अभी नो लॉन्गर एन ऑप्शन, इससे इस्तेमाल में होगा चाहे कोई भी क्षेत्र होगा, हेल्थ होगा, कम्युनिकेशन होगा, रिसर्च होगा, लेकिन वन हैज टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हमने जो कई ऐसे प्रयोग किए जो हाइब्रिड मॉडल बड़े कामयाब साबित हुए, यानी जैसे हमारा सीपी ग्राम से उसमें हम एआई के द्वारा चैटबॉट भी रखा हुआ, एआई के द्वारा डिस्पोजल भी होता है, लेकिन डिस्पोजल के बाद शिकायतकर्ता से बातचीत वार्तालाप एक व्यक्ति करता है, उससे उसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन होता है। इसी वजह से हमने टेलीमेडिसिन में भी कुछ प्रयोग किए हैं जहां हमने एक फिजिकल डॉक्टर बनाते हैं साथ में एआई डॉक्टर। एआई का लाभ ये है कि अगर आप चिकित्सा जगत को ले लें या जीन्स की बात कर रहे हैं
1: जी,
0: तो इतने सारे जीन्स को स्क्रीन करने में हमें कई दशक लग जाएंगे, ईज ऑफ वर्किंग बहुत ज्यादा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जो लैंग्वेज मॉडल्स

0: सौ रूपये हर क्षेत्र में इस तरह से टारगेट रखे गए कि हम दुनिया के दूसरे देशों की बराबरी कर सके। और इस वक्त अगर दुनिया में हिन्दुस्तान की साख बढ़ी है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान भारत की टेक्नोलॉजी इनोवेशन में तरक्की का है।
1: सर, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से

में तीन पर काम शुरू हो चुका है। तीन में से एक है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। हाइड्रोजन में हमें थोड़ी सी दिक्कत यह है कि उसको स्केल अप करने में, रिफाइनिंग में, इलेक्ट्रोलाइजर्स वगैरह।